0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें की स्पेन की प्रेरित की यात्रा का संक्षिप्त विवरण। प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, संत पापा लियो 14वें और पत्रकारों को लेकर इटा एयरवेज विमान आज सुबह 8:15 बजे रोम के फ्यूमिचिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से स्पेन के लिए रवाना हुआ। संत पापा ने विमान में विमान चालकों का अभिवादन किया और विमान में अपने साथ जा रहे पत्रकारों का भी अभिवादन किया। स्पेन के लिए अपनी यात्रा के दौरान इटली के ऊपर से उड़ान भरते हुए संत पापा लियो ने इटली गणराज्य के राष्ट्रपति श्री सर्जो मत्तरेला को अपने अभिवादन में इटली देश की भलाई और खुशहाली के लिए दिल से प्रार्थनाओं का भरोसा दिलाया। टेलीग्राम में उन्होंने याद दिलाया कि स्पेन की उनकी यात्रा कुंवारी माता मरियम की ममता भरी नजरों में है, जो हमारा स्वागत करती हैं और हमें ईश्वर की ओर ले जाती हैं, जो सभी लोगों के लिए एकता और उम्मीद का जरिया है। स्पेन मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के पार एक देश है। स्पेन का सबसे बड़ा भाग इबेरिया प्रायद्वीप पर स्थित है, जिसके क्षेत्र में अटलांटिक महासागर के कनारिया द्वीप समूह, मध्य सागर में बलेयार द्वीप समूह और अफ्रीका में सेउता और मेलिया के स्वायत्त नगर भी शामिल हैं। देश की मुख्य भूमि दक्षिण में जिब्राल्टर से लगती है। इसके दक्षिण और पूर्व में भूमध्य सागर, उत्तर में फ्रांस, अंडेरा और बिस्के की खाड़ी और पश्चिम में पुर्तगाल और अटलांटिक महासागर है। 5,05,990 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ स्पेन यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा देश है और 4.74 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूरोपीय संघ का सदस्य राज्य है। स्पेन की राजधानी और सबसे बड़ा नगर मैड्रिड है। मैड्रिड के अडोल्फो सुआरेज बजारस हवाई अड्डे पर स्पेन के झंडों के साथ वाटिकन के झंडे लहरा रहे थे, जहां संत पापा 2 घंटे की विमान यात्रा के बाद सुबह 10:15 बजे पहुंचे। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के दौरे के 15 साल बाद संत पापा लियो 14वें स्पेन की प्रेरित यात्रा कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर स्पेन के राजा फिलिप षष्ठम और रानी लेतीसिया, स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज रस्मों के अनुसार सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और साथ ही स्पेन और अंडोरा की रियासत के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष पियेरो पियोप्पो और स्पानी धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष एवं वालाडोलिड महाधर्माध्यक्ष लुइस जेबियर ग्रासिया भी मौजूद थे। हवाई अड्डे पर संत पापा का स्वागत राजा फिलिप षष्ठम और रानी लेतीसिया ने किया। वे दोनों मिलिट्री सम्मान के लिए पोडियम पर चढ़े। संत पापा को झंडों का सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। संत पापा लियो 14वें ने कैटवॉक की लाल रेलिंग पर चलते हुए प्रतिनिधि मंडल का अभिवादन किया, फिर एक छोटी सी प्राइवेट मीटिंग के लिए शाही परिवार के साथ हॉल ऑफ ऑनर में गए। स्पैनिश झंडे पकड़े हुए कई बच्चों ने संत पापा का गर्मजोशी से स्वागत किया। संत पापा उनकी बात सुनने के लिए रुके और उन्हें वहां माता मरियम की एक मूर्ति सहित अनेक तोहफे मिले। मैड्रिड में संत पापा लियो का कार्यक्रम राजभवन में एक आधिकारिक स्वागत समारोह के साथ शुरू हुआ। दोपहर में स्पेन के राजा फिलिप षष्ठम और रानी लेतिसिया से औपचारिक मुलाकात हुई। दोपहर 1 बजे संत पापा लियो 14वें ने राजभवन में नागर समाज के अधिकारियों और राजनयिकों को संबोधित किया।
3: Majestades, altezas reales, distinguidas autoridades y miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores, doy gracias al Señor por este encuentro.
4: मैं आपके साथ मुलाकात करने के अवसर के लिए प्रभु का शुक्रगुजार हूँ और स्पेन में प्रेरित यात्रा हेतु निमंत्रण के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ। यह यात्रा कई चरणों में होगा और हर चरण में इस महान देश की बहुमुखी समृद्धि का एक पहलू दिखेगा जिसने लगभग 2000 सालों से सुसमाचार का स्वागत किया है। परंपरा ने हमेशा ही इबेरियन प्रायद्वीप में शुरुआती सुसमाचार प्रचार को प्रेरित याकूब के धर्मोपदेश से जोड़ा है। इस मेल का ईश शास्त्रीय महत्व है क्योंकि यह स्थानीय कलीसिया की इस चेतना को दर्शाता है कि वह पेंतेकोस्त से शुरू हुए प्रेरितों के मिशन के साथ जुड़ा है। पोप ने देश के अतीत पर गौर करते हुए कहा, आपके लोगों की विविध पहचान को खत्म किए बिना ख्रिस्ते विश्वास और इस भूमि के बीच पुराने रिश्ते ने आपकी संस्कृति को गहराई से आकार दिया है और आज एक मानव परिवार के रूप में हमें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उनके बीच उम्मीद एवं दिशा का एक माध्यम बन गया है। संत पापा ने उन लोकप्रिय भक्तों की याद की जो हर शहर एवं कस्बों में वर्ष की गति एवं जीवन की विभिन्न पृष्ठभूमियों में मुक्ति के सच्चे साधन हैं। कलात्मक एवं संगीत की विरासत के साथ साथ भाईचारे और उदास संघों के द्वारा वे प्रभु येसु और अपने लोगों के बीच फलप्रद मुलाकात के गवाह हैं, जो एक उत्साही प्रजा है जो जीवन से प्यार करती और उसे व्यक्त करती है। पोप ने अपनी प्रेरित यात्रा का उद्देश्य बतलाते हुए कहा, मैं विश्वासों के बीच सुसमाचार के प्रति एक नवीकृत निष्ठा को पक्का करने, बढ़ावा देने और स्थापित करने आया हूँ। साथ ही इस देश के अलग अलग हिस्सों के बीच गहरी मेल मिलाप एवं सहयोग को भी प्रोत्साहित करने आया हूँ। वास्तव में आपका अपना इतिहास बतलाता है कि टकराव नहीं बल्कि मिलने जुलने की संस्कृति ही स्थिरता एवं खुशहाली को बढ़ावा दे सकता है। असल में शांति का संदेश जो दुर्भाग्य से आजकल कुछ लोगों को भोलेपन की तरह और कुछ लोगों को टकराव वाला लगता है उन लोगों द्वारा पसंद किया जाता है जो खुद को पहले से ही बनी सोच में बंद नहीं रखते बल्कि सच्चाई के लिए खुले रहते हैं। सिर्फ शब्दों, तस्वीरों एवं बयानबाजी के दायरे में रहना खतरनाक है। पोप फ्रांसिस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वास्तविकताएं विचारों से बड़ी होती हैं। संत पापा ने स्पेन के 2 महान संतों का उदाहरण देते हुए कहा, इस बारे में मैं इस देश के 2 महान लोगों का जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने 5 सदियों से कलीसिया के जीवन और कई लोगों की आध्यात्मिक यात्रा को बेहतर बनाया है, संत जॉन ऑफ द क्रॉस और अविला की संत तेरेसा। दिव्य रहस्य के लिए जुनून ने उन दोनों को दोस्त बना दिया। उनका रहस्यवाद खुली आंखों वाला है, यानी इतिहास से अलग नहीं बल्कि मुद्दों की जड़ और सच्चाई के दिल तक पहुंचने वाला। अजीब बात यह है कि रोशनी की अपनी प्यास में उन्होंने अंधेरे की तारीफ करना सीखा। सुखद रात एक ऐसा समय जब आत्मा उन चीजों से मुक्त हो जाती है जिन्हें वह जानती और रखती है। आज भी जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती और जो कई लोगों में समझ के अंधेरे एवं भावनाओं की हिंसा जगाती है वह है अनजानापन, जिसके सामने हम बिना माप के खोए हुए महसूस करते हैं, मानो कि हमने अपनी दिशा खो दी हो। इसलिए सार्वजनिक जीवन में भी हमें ऐसे पुरुषों और महिलाओं की जरूरत है जो अंधेरे में भी रोशनी देख सकें। संत पापा ने कहा, हमारा समय जो भयंकर असंतुलन एवं झगड़ों से हिला हुआ लगता है अपनी गहराई से शांति, मानव और उसकी गरिमा की एक नई समझ, प्यार की सभ्यता के लिए पुकार रहा है। संत तेरेसा इसी प्रक्रिया को आंतरिक गढ़ की छवि का इस्तेमाल करके बताती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति एक कमरे से दूसरे कमरे में सबसे अंदर के कमरे की ओर बढ़ता है, यानी अपने दिल की ओर, सच्चाई की पौत्र जगह की ओर, जगह बड़ी होती जाती है, दिमाग खुलता जाता है, चुनौतियां दूर हो जाती हैं, तनाव कम हो जाता है, दूसरों को अपनी जगह मिलती है और पूरा संसार एक घर बन जाता है। यह खुद से भागने जैसा नहीं है बल्कि बिल्कुल अलग और हमेशा नया के लिए एक बड़ा खुलापन है जो तब मिलता है जब हम खुद में लौटते हैं। मानव का यही पहलू वजह है कि धार्मिक स्वतंत्रता और अंतःकरण की आज़ादी की रक्षा की जानी चाहिए। आज ध्रुवीकरण की आग को हवा देकर प्रसिद्धि पाने का लालच कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है और मानव प्रतिष्ठा का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए हमें संस्कृति, आंतरिक सोच और मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत है। हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है। फिर भी इन अंधेरी रातों में सच्चाई के प्रति वफादार पुरुषों और महिलाओं को एक कमरे से दूसरे कमरे में तब तक ढके

0: वाले कहानियों को दूर करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, ताकि मुश्किलों के सही समझ के द्वारा व्यर्थ सहज बातों को दूर किया जा सके। नई तकनीकी ने एक बनावटी माहौल बना दिया है जहाँ हमारी बुनियादी पसंद की परीक्षा होती है, भेदभाव बढ़ जाते हैं, आलोचनात्मक सोच कमजोर हो जाती है और हावी होने वाले हित मौत की कामनाएं फैलाते हैं। फिर भी पोप आशा दिलाते हैं कि अच्छाई जीत एवं फैल सकती है। सुरक्षा, जिसको हम अक्सर हथियारों और दीवारों में पाने की उम्मीद करते हैं, असल में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना, साथ मिलकर बढ़ना, कंधे से कंधा मिलाकर सीखने से मिलती है। आपका अपना इतिहास इसका गवाह है। उदाहरण के लिए, इबेरियन प्रायद्वीप पर इस्लाम की मौजूदगी एक लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सच्चाई रही है। उस समय न सिर्फ टकराव था, बल्कि ख्रिस्तियों, मुसलमानों और यहूदियों के बीच सच्चाई के अर्थ पर संपर्क, बातचीत और संवाद के लिए जगह बनाने की कोशिश की गई। संत इग्नासियस लॉयला का उदाहरण देते हुए पोप ने कहा, इस देश के एक और नेक बेटे ने हमें सिखाया है कि मुश्किलें और नाकामियां हमें फिर से सोचने का मौका देती हैं। उन्होंने समझदारी और चिंतन के माध्यम से अपने दिल की उदासी और सांत्वना को सच माना, जिससे उन्हें हथियारों के बजाय शांति और ताकतवर लोगों के बजाय संतों को ज्यादा पसंद करने का मौका मिला। वे समझ गए थे कि जिस अच्छाई की ओर खींचे चले आ रहे थे वह धोखा नहीं थी, और इसलिए उनका संकट एक कृपा बन गया। ऐसा ही उन नई चीजों के लिए भी हो सकता है जो आज हमें परेशान करती हैं और अक्सर फूट डालती हैं। संत पापा ने आगे कहा, हमें बेइज्जत करने वाले या दुश्मनी भरे शब्दों से बचना चाहिए, बल्कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो प्रकाश डाले और स्पष्टता जो नई संभावनाओं को खोले। हम सहज उत्साह को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ना ही बेबुनियाद डर को हवा दे सकते हैं। इसके बजाय आइए हम इन मानकों को जिम्मेदार योजना, मानवीय और सामाजिक प्रभाव का आकलन, सबसे कमजोर लोगों को शामिल करने, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और न्याय तथा शांति की दिशा में अनुसंधान एवं उद्योग का मार्गदर्शन करने जैसे कार्यों में बदलें। अंत में संत पापा ने उपस्थित सभी लोगों को संबोधित कर कहा, मैं आपके देश के अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं बहुपक्षवाद को ईमानदारी से पालन करने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोगों के बीच शांति और एकजुटता के लिए एक सक्रिय प्रतिबद्धता में दिखता है। साथ ही मैं आपको अपने देश में बातचीत एवं नागरिक दोस्ती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। ईश्वर स्पेन को आशीष प्रदान करें।
1: Que Dios bendiga España.
2: आज शाम 6 बजे संत पापा लियो 14वें सोशल प्रोजेक्ट से दिया 24 होरस में काम करने वालों और मदद पाने वालों से मुलाकात करेंगे, और शाम को 8:30 बजे संत पापा लियो मैड्रिड के प्लाजा दे लीमा में युवाओं के साथ एक जागरण प्रार्थना की अध्यक्षता करेंगे। अगले दिन कॉर्पस क्रिस्टी के त्यौहार पर संत पापा मशहूर प्लाजा दे सिबेलस में मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे, जिसमें कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस भी होगा। उसी दिन संत पापा संत अगुस्टिन धर्म समाज के अपने भाइयों से अकेले में मिलेंगे, और बाद में मैड्रिड के मोविस्टार एरिना में संस्कृति, कला, बिजनेस और खेल के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग में भाग लेंगे। सोमवार को संत पापा सुबह स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज से मिलेंगे। उसके बाद कांग्रेस ऑफ डिप्यूटीज के पार्लियामेंट के सदस्यों को संबोधित करेंगे। फिर वे स्पानी धर्माध्यक्ष सम्मेलन के मुख्यालय में धर्माध्यक्षों से मिलेंगे। शाम को संत पापा बर्नियो स्टेडियम में स्थानीय धर्म प्रांत के समुदाय से मिलेंगे। मंगलवार को संत पापा लियो बार्सिलोना जाएंगे। वे बार्सिलोना के महागिरजा घर में दोपहर के देवदूत प्रार्थना की अगुवाई करेंगे, और शाम को लुइस कंपनीज ओलंपिक स्टेडियम में एक जागरण प्रार्थना की अध्यक्षता करेंगे। बुधवार को संत पापा एक जेल का दौरा करेंगे, मोंटेसेरात के एबे में रोजरी प्रार्थना करेंगे और वहां बेनेडिक्टन समुदाय के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। फिर बार्सिलोना लौटकर धर्म प्रांतीय चैरिटी और कल्याणकारी संस्थाओं के साथ एक मीटिंग करेंगे। बुधवार शाम प्रेरितिक यात्रा का एक खास क्षण होगा, जब संत पापा लियो 14वें सागरदा फामिलिया महागिरजाघर जाएंगे, जिसे मशहूर कातालान आर्किटेक्ट आदरणीय

अंतोनी गाउदी ने डिजाइन किया था, जिसकी विरासत को इस साल उनकी मौत की 100वीं सालगिरह पर याद किया जा रहा है। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने 2010 में इस महागिरजाघर को आशीष दिया था और संत पापा लियो 14वें महागिरजाघर के सबसे ऊंचे टावर येसु ख्रीस्त टावर को आशीष देंगे। गुरुवार को संत पापा अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर कनारी आइलैंड के लिए उड़ान भरेंगे, जो यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ा समुद्री प्रवेश मार्ग है। लास पाल्मास डेन ग्रैन कनारिया और सांता क्रूज डे टेनरिफ में संत पापा मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे और प्रवासी स्वागत केंद्र और मदद के लिए फ्रंट लाइन में काम करने वालों से मिलेंगे। संत पापा अपनी यात्रा के दौरान स्पेन में पुरोहितों द्वारा शोषण के शिकार लोगों से भी मुलाकात करेंगे। मीडिया में आई खबरों के बाद वाटिकन प्रेस ऑफिस के टेलीग्राम प्रोफाइल के जरिए वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यह मीटिंग स्पेन की कलीसिया ने आयोजित की है, पीड़ितों, उनकी इच्छाओं और उनकी गोपनीयता का सम्मान करते हुए मीटिंग के बाद ही यह जानकारी दी जा सकती है। शोषण का मुद्दा स्पेन की कलीसिया के लिए एक दर्दनाक मुद्दा बना हुआ है, जिसने हाल के सालों में रोकथाम और मुआवजे के मकसद से कई कोशिशें की हैं। हाल ही में मार्च में स्पानी धर्माध्यक्ष सम्मेलन, धर्मसंघियों के सम्मेलन और मिनिस्ट्री ऑफ द प्रेसिडेंसी के बीच इस दर्दनाक सच्चाई को न्याय और सत्य के साथ सुलझाने के लिए एक प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी। संत पापा के दौरे के पहले कई स्थानीय मीडिया ने यह मुद्दा उठाया है और कुछ ने बताया है कि स्पेन के कई पीड़ितों ने संत पापा को चिट्ठियां भेजकर उनसे मिलने का आग्रह किया है। संत पापा लियो 14वें बंद कमरे में उनसे बातचीत करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के परमाध्यक्षीय काल में 2008 में अमेरिका, साथ ही ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के दौरे के दौरान पहले से ही देखा जा चुका है। और संत पापा फ्रांसिस के समय चिली, आयरलैंड, पुर्तगाल और बेल्जियम के दौरे के दौरान भी ऐसी ही सभा हुई थी। कनारी आइलैंड में अपना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद संत पापा लियो 14वें शुक्रवार शाम को रोम लौटने के लिए अपने विमान में सवार होंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें की स्पेन की प्रेरित की यात्रा का संक्षिप्त विवरण। प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, संत पापा लियो 14वें और पत्रकारों को लेकर ईटा एयरवेज विमान आज सुबह 8:15 बजे रोम के फ्यूमिचिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से स्पेन के लिए रवाना हुआ। संत पापा ने विमान में विमान चालकों का अभिवादन किया और विमान में अपने साथ जा रहे पत्रकारों का भी अभिवादन किया। स्पेन के लिए अपनी यात्रा के दौरान इटली के ऊपर से उड़ान भरते हुए संत पापा लियो ने इटली गणराज्य के राष्ट्रपति श्री सर्जो मत्तरेला को अपने अभिवादन में इटली देश की भलाई और खुशहाली के लिए दिल से प्रार्थनाओं का भरोसा दिलाया। टेलीग्राम में उन्होंने याद दिलाया कि स्पेन की उनकी यात्रा कुंवारी माता मरियम की ममता भरी नजरों में है, जो हमारा स्वागत करती हैं और हमें ईश्वर की ओर ले जाती हैं, जो सभी लोगों के लिए एकता और उम्मीद का जरिया है। स्पेन मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के पार एक देश है। स्पेन का सबसे बड़ा भाग इबेरिया प्रायद्वीप पर स्थित है, जिसके क्षेत्र में अटलांटिक महासागर के कनारिया द्वीप समूह, मध्य सागर में बलेयार द्वीप समूह और अफ्रीका में सेउता और मेलिया के स्वायत्त नगर भी शामिल हैं। देश की मुख्य भूमि दक्षिण में जिब्राल्टर से लगती है। इसके दक्षिण और पूर्व में भूमध्य सागर, उत्तर में फ्रांस, अंडेरा और बिस्के की खाड़ी और पश्चिम में पुर्तगाल और अटलांटिक महासागर है। 5,05,990 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ स्पेन यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा देश है और 4.74 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूरोपीय संघ का सदस्य राज्य है। स्पेन की राजधानी और सबसे बड़ा नगर मैड्रिड है। मैड्रिड के अडोल्फो सुआरेज बजारस हवाई अड्डे पर स्पेन के झंडों के साथ वाटिकन के झंडे लहरा रहे थे, जहां संत पापा 2 घंटे की विमान यात्रा के बाद सुबह 10:15 बजे पहुंचे। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के दौरे के 15 साल बाद संत पापा लियो 14वें स्पेन की प्रेरित की यात्रा कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर स्पेन के राजा फिलिप षष्ठम और रानी लेतीसिया, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज रस्मों के अनुसार सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और साथ ही स्पेन और अंडोरा की रियासत के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष पियेरो पियोपो और स्पानी धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष एवं वालाडेलिल महाधर्माध्यक्ष लुइस जेबियर ग्रासिया भी मौजूद थे। हवाई अड्डे पर संत पापा का स्वागत राजा फिलिप षष्ठम और रानी लेतीसिया ने किया। वे दोनों मिलिट्री सम्मान के लिए पोडियम पर चढ़े। संत पापा को झंडों का सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। संत पापा लियो 14वें ने कैटवॉक की लाल रेलिंग पर चलते हुए प्रतिनिधि मंडल का अभिवादन किया, फिर एक छोटी सी प्राइवेट मीटिंग के लिए शाही परिवार के साथ हॉल ऑफ ऑनर में गए। स्पैनिश झंडे पकड़े हुए कई बच्चों ने संत पापा का गर्मजोशी से स्वागत किया। संत पापा उनकी बात सुनने के लिए रुके और उन्हें वहां माता मरियम की एक मूर्ति सहित अनेक तोहफे मिले। मैड्रिड में संत पापा लियो का कार्यक्रम राजभवन में एक आधिकारिक स्वागत समारोह के साथ शुरू हुआ। दोपहर में स्पेन के राजा फिलिप षष्ठम और रानी लेतीसिया से औपचारिक मुलाकात हुई। दोपहर 1 बजे संत पापा लियो 14वें ने राजभवन में नागर समाज के अधिकारियों और राजनयिकों को संबोधित किया।
3: Majestades, altezas reales, distinguidas autoridades y miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores, doy gracias al Señor por este encuentro.
4: मैं आपके साथ मुलाकात करने के अवसर के लिए प्रभु का शुक्रगुजार हूं और स्पेन में प्रेरित यात्रा हेतु निमंत्रण के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं। यह यात्रा कई चरणों में होगा और हर चरण में इस महान देश की बहुमुखी समृद्धि का एक पहलू दिखेगा जिसने लगभग 2000 सालों से सुसमाचार का स्वागत किया है। परंपरा ने हमेशा ही इबेरियन प्रायद्वीप में शुरुआती सुसमाचार प्रचार को प्रेरित याकूब के धर्मोपदेश से जोड़ा है। इस मेल का ईश शास्त्रीय महत्व है क्योंकि यह स्थानीय कलीसिया की इस चेतना को दर्शाता है कि वह पेंतेकोस्त से शुरू हुए प्रेरितों के मिशन के साथ जुड़ा है। पोप ने देश के अतीत पर गौर करते हुए कहा, आपके लोगों की विविध पहचान को खत्म किए बिना ख्रिस्त विश्वास और इस भूमि के बीच पुराने रिश्ते ने आपकी संस्कृति को गहराई से आकार दिया है और आज एक मानव परिवार के रूप में हमें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उनके बीच उम्मीद एवं दिशा का एक माध्यम बन गया है। संत पापा ने उन लोकप्रिय भक्तों की याद की जो हर शहर एवं कस्बों में वर्ष की गति एवं जीवन की विभिन्न पृष्ठभूमियों में मुक्ति के सच्चे साधन हैं। कलात्मक एवं संगीत की विरासत के साथ साथ भाईचारे और उदार संघों के द्वारा वे प्रभु येसु और अपने लोगों के बीच फलप्रद मुलाकात के गवाह हैं, जो एक उत्साही प्रजा है जो जीवन से प्यार करती और उसे व्यक्त करती है। पोप ने अपनी प्रेरित यात्रा का उद्देश्य बतलाते हुए कहा, मैं विश्वासों के बीच सुसमाचार के प्रति एक नवीकृत निष्ठा को पक्का करने, बढ़ावा देने और स्थापित करने आया हूँ। साथ ही इस देश के अलग अलग हिस्सों के बीच गहरी मेल मिलाप एवं सहयोग को भी प्रोत्साहित करने आया हूँ। वास्तव में आपका अपना इतिहास बतलाता है कि टकराव नहीं बल्कि मिलने जुलने की संस्कृति ही स्थिरता एवं खुशहाली को बढ़ावा दे सकता है। असल में शांति का संदेश जो दुर्भाग्य से आजकल कुछ लोगों को भोलेपन की तरह और कुछ लोगों को टकराव वाला लगता है, उन लोगों द्वारा पसंद किया जाता है जो खुद को पहले से ही बनी सोच में बंद नहीं रखते बल्कि सच्चाई के लिए खुले रहते हैं। सिर्फ शब्दों, तस्वीरों एवं बयानबाजी के दायरे में रहना खतरनाक है। पोप फ्रांसिस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वास्तविकताएं विचारों से बड़ी होती हैं। संत पापा ने स्पेन के 2 महान संतों का उदाहरण देते हुए कहा, इस बारे में मैं इस देश के 2 महान लोगों का जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने 5 सदियों से कलीसिया के जीवन और कई लोगों की आध्यात्मिक यात्रा को बेहतर बनाया है, संत जॉन ऑफ द क्रॉस और अविला की संत तेरेसा। दिव्य रहस्य के लिए जुनून ने उन दोनों को दोस्त बना दिया। उनका रहस्यवाद खुली आंखों वाला है, यानी इतिहास से अलग नहीं बल्कि मुद्दों की जड़ और सच्चाई के दिल तक पहुंचने वाला। अजीब बात यह है कि रोशनी की अपनी प्यास में उन्होंने अंधेरे की तारीफ करना सीखा। सुखद रात एक ऐसा समय जब आत्मा उन चीजों से मुक्त हो जाती है जिन्हें वह जानती और रखती है। आज भी जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती और जो कई लोगों में समझ के अंधेरे एवं भावनाओं की हिंसा जगाती है वह है अनजानापन, जिसके सामने हम बिना माप के खोए हुए महसूस करते हैं, मानो कि हमने अपनी दिशा खो दी हो। इसलिए सार्वजनिक जीवन में भी हमें ऐसे पुरुषों और महिलाओं की जरूरत है जो अंधेरे में भी रोशनी देख सकें। संत पापा ने कहा, हमारा समय जो भयंकर असंतुलन एवं झगड़ों से हिला हुआ लगता है, अपनी गहराई से शांति, मानव और उसकी गरिमा की एक नई समझ, प्यार की सभ्यता के लिए पुकार रहा है। संत तेरेसा इसी प्रक्रिया को आंतरिक गढ़ की छवि का इस्तेमाल करके बताती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति एक कमरे से दूसरे कमरे में सबसे अंदर के कमरे की ओर बढ़ता है, यानी अपने दिल की ओर, सच्चाई की पौत्र जगह की ओर, जगह बड़ी होती जाती है, दिमाग खुलता जाता है, चुनौतियां दूर हो जाती हैं, तनाव कम हो जाता है, दूसरों को अपनी जगह मिलती है और पूरा संसार एक घर बन जाता है। यह खुद से भागने जैसा नहीं है बल्कि बिल्कुल अलग और हमेशा नया के लिए एक बड़ा खुलापन है जो तब मिलता है जब हम खुद में लौटते हैं। मानव का यही पहलू वजह है कि धार्मिक स्वतंत्रता और अंतःकरण की आज़ादी की रक्षा की जानी चाहिए। आज ध्रुवीकरण की आग को हवा देकर प्रसिद्धि पाने का लालच कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है और मानव प्रतिष्ठा का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए हमें संस्कृति, आंतरिक सोच और मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत है। हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है। फिर भी इन अंधेरी रातों में सच्चाई के प्रति वफादार पुरुषों और महिलाओं को एक कमरे से दूसरे कमरे में तब तक ढकेला जाता है जब तक कि उनके अंतःकरण में इंसाफ एवं शांति नहीं आ जाती। उनकी स्वतंत्रता से ही हम आज़ाद होना सीखते हैं। संत पापा ने स्पेन की कार्तिक कलीसिया पर गौर करते हुए कहा, कार्तिक कलीसिया मानव दिल की प्यास की सेवा है, या एक ऐसी सेवा है जो थोपने से नहीं बल्कि कई शहीदों और संतों द्वारा साबित की गई सुसमाचार की गवाही है। आज कलीसिया मेल मिलाप और शांति की तलाश में लोगों के भविष्य की सेवा में खुद को लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, सत्य के प्रेम के लिए मैं सभी को अपने समाज की सच्चाई एवं इतिहास की बांटने वाली एवं ध्रुवीकरण करने वाली कहानियों को दूर करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, ताकि मुश्किलों के सही समझ के द्वारा व्यर्थ सहज बातों को दूर किया जा सके। नई तकनीकी ने एक बनावटी माहौल बना दिया है जहाँ हमारी बुनियादी पसंद की परीक्षा होती है। भेदभाव बढ़ जाते हैं, आलोचनात्मक सोच कमजोर हो जाती है और हावी होने वाले हित मौत की कामनाएं फैलाते हैं। फिर भी पोप आशा दिलाते हैं कि अच्छाई जीत एवं फैल सकती है। सुरक्षा, जिसको हम अक्सर हथियारों और दीवारों में पाने की उम्मीद करते हैं, असल में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना, साथ मिलकर बढ़ना, कंधे से कंधा मिलाकर सीखने से मिलती है। आपका अपना इतिहास इसका गवाह है। उदाहरण के लिए इबेरियन प्रायद्वीप पर इस्लाम की मौजूदगी एक लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सच्चाई रही है। उस समय न सिर्फ टकराव था बल्कि ख्रिस्तियों, मुसलमानों और यहूदियों के बीच सच्चाई के अर्थ पर संपर्क, बातचीत और संवाद के लिए जगह बनाने की कोशिश की गई। संत इग्नासियस लॉयला का उदाहरण देते हुए पोप ने कहा, इस देश के एक और नेक बेटे ने हमें सिखाया है कि मुश्किलें और नाकामियां हमें फिर से सोचने का मौका देती हैं। उन्होंने समझदारी और चिंतन के माध्यम से अपने दिल की उदासी और सांत्वना को सच माना, जिससे उन्हें हथियारों के बजाय शांति और ताकतवर लोगों के बजाय संतों को ज्यादा पसंद करने का मौका मिला। वे समझ गए थे कि जिस अच्छाई की ओर खींचे चले आ रहे थे वह धोखा नहीं थी और इसलिए उनका संकट एक कृपा बन गया। ऐसा ही उन नई चीजों के लिए भी हो सकता है जो आज हमें परेशान करती हैं और अक्सर फूट डालती हैं। संत पापा ने आगे कहा, हमें बेइज्जत करने वाले या दुश्मनी भरे शब्दों से बचना चाहिए, बल्कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो प्रकाश डाले और स्पष्टता जो नई संभावनाओं को खोले। हम सहज उत्साह को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ना ही बेबुनियाद डर को हवा दे सकते हैं। इसके बजाय आइए हम इन मानकों को जिम्मेदार योजना, मानवीय और सामाजिक प्रभाव का आकलन, सबसे कमजोर लोगों को शामिल करने, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और न्याय तथा शांति की दिशा में अनुसंधान एवं उद्योग का मार्गदर्शन करने जैसे कार्यों में बदलें। अंत में संत पापा ने उपस्थित सभी लोगों को संबोधित कर कहा, मैं आपके देश के अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं बहुपक्षवाद को ईमानदारी से पालन करने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोगों के बीच शांति और एकजुटता के लिए एक सक्रिय प्रतिबद्धता में दिखता है। साथ ही मैं आपको अपने देश में बातचीत एवं नागरिक दोस्ती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। ईश्वर स्पेन को आशीष प्रदान करें।
3: Que Dios bendiga España.
2: आज शाम 6 बजे संत पापा लियो 14वें सोशल प्रोजेक्ट से दिया 24 होरस में काम करने वालों और मदद पाने वालों से मुलाकात करेंगे और शाम को 8:30 बजे संत पापा लियो मैड्रिड के प्लाजा दे लीमा में युवाओं के साथ एक जागरण प्रार्थना की अध्यक्षता करेंगे। अगले दिन कॉर्पस क्रिस्टी के त्यौहार पर संत पापा मशहूर प्लाजा दे सिबेलस में मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे, जिसमें कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस भी होगा। उसी दिन संत पापा संत अगुस्टिन धर्म समाज के अपने भाइयों से अकेले में मिलेंगे और बाद में मैड्रिड के मोविस्टार एरिना में संस्कृति, कला, बिजनेस और खेल के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग में भाग लेंगे। सोमवार को संत पापा सुबह स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज से मिलेंगे। उसके बाद कांग्रेस ऑफ डिप्यूटीज के पार्लियामेंट के सदस्यों को संबोधित करेंगे। फिर वे स्पानी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के मुख्यालय में धर्माध्यक्षों से मिलेंगे। शाम को संत पापा बर्नियो स्टेडियम में स्थानीय धर्म प्रांत के समुदाय से मिलेंगे। मंगलवार को संत पापा लियो बार्सिलोना जाएंगे। वे बार्सिलोना के महागिरजाघर में दोपहर के देवदूत प्रार्थना की अगुवाई करेंगे और शाम को लुइस कंपनीज ओलंपिक स्टेडियम में एक जागरण प्रार्थना की अध्यक्षता करेंगे। बुधवार को संत पापा एक जेल का दौरा करेंगे। मोंटेसेरात के एबे में रोजरी प्रार्थना करेंगे और वहां बेनेडिक्टन समुदाय के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। फिर बार्सिलोना लौटकर धर्म प्रांतीय चैरिटी और कल्याणकारी संस्थाओं के साथ एक मीटिंग करेंगे। बुधवार शाम प्रेरितिक यात्रा का एक खास क्षण होगा जब संत पापा लियो 14वें सागर दा फामिलिया महागिरजाघर जाएंगे, जिसे मशहूर कातालान आर्किटेक्ट आदरणीय अंतोनी गाउदी ने डिजाइन किया था, जिसकी विरासत को इस साल उनकी मौत की 100वीं सालगिरह पर याद किया जा रहा है। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने 2010 में इस महागिरजाघर को आशीष दिया था और संत पापा लियो 14वें महागिरजाघर के सबसे ऊंचे टावर येसु ख्रिस्त टावर को आशीष देंगे। गुरुवार को संत पापा अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर कनारी आइलैंड के लिए उड़ान भरेंगे, जो यूरोप जाने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ा समुद्री प्रवेश मार्ग है। लास पाल्मास डेन ग्रैन कनारिया और सांता क्रूज डे टेनरिफ में संत पापा मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे और प्रवासी स्वागत केंद्र और मदद के लिए फ्रंट लाइन में काम करने वालों से मिलेंगे। संत पापा अपनी यात्रा के दौरान स्पेन में पुरोहितों द्वारा शोषण के शिकार लोगों से भी मुलाकात करेंगे। मीडिया में आई खबरों के बाद वाटिकन प्रेस ऑफिस के टेलीग्राम प्रोफाइल के जरिए वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यह मीटिंग स्पेन की कलीसिया ने आयोजित की है, पीड़ितों, उनकी इच्छाओं और उनकी गोपनीयता का सम्मान करते हुए मीटिंग के बाद ही यह जानकारी दी जा सकती है। शोषण का मुद्दा स्पेन की कलीसिया के लिए एक दर्दनाक मुद्दा बना हुआ है, जिसने हाल के सालों में रोकथाम और मुआवजे के मकसद से कई कोशिशें की हैं। हाल ही में मार्च में स्पानी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन, धर्मसंघियों के सम्मेलन और मिनिस्ट्री ऑफ द प्रेसिडेंसी के बीच इस दर्दनाक सच्चाई को न्याय और सत्य के साथ सुलझाने के लिए एक प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी। संत पापा के दौरे के पहले कई स्थानीय मीडिया ने यह मुद्दा उठाया है और कुछ ने बताया है कि स्पेन के कई पीड़ितों ने संत पापा को चिट्ठियां भेजकर उनसे मिलने का आग्रह किया है। संत पापा लियो 14वें बंद कमरे में उनसे बातचीत करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के परमाध्यक्षीय काल में 2008 में अमेरिका, साथ ही ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के दौरे के दौरान पहले से ही देखा जा चुका है। और संत पापा फ्रांसिस के समय चिली, आयरलैंड, पुर्तगाल और बेल्जियम के दौरे के दौरान भी ऐसी ही सभा हुई थी। कनारी आइलैंड में अपना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद संत पापा लियो 14वें शुक्रवार शाम को रोम लौटने के लिए अपने विमान में सवार होंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: उसका चिन्ह
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
0: प्रेरितों का धर्म सार।
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ

0: फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा वेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु येसु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
2: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें, आमीन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें का स्पेन की प्रेरितिक यात्रा का संक्षिप्त विवरण। प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज, फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, संत पापा लियो 14वें अपनी चौथी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरितिक यात्रा स्पेन में कर रहे हैं। स्पेन की 7 दिनों की प्रेरितिक यात्रा का पहला दिन मैड्रिड के राजभवन के दौरे से शुरू हुआ, जहां संत पापा का स्वागत राजा फिलिप षष्ठम, रानी लेतीसिया और उनकी 2 बेटियों ने किया। राजभवन में मैड्रिड के अधिकारियों और राजनयिकों को संबोधित करते हुए संत पापा लियो 14वें ने कहा कि वे विश्वासियों के बीच सुसमाचार में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए स्पेन आए हैं, कि धार्मिक स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। संत पापा लियो 14वें ने शाम को मैड्रिड धर्म प्रांत की सूचना और स्वागत सामाजिक परियोजना केंद्र चेदिया 24 होरास का दौरा किया और वहां करुणा के कार्य में संलग्न लोगों और लाभार्थियों से मुलाकात की। संत पापा लियो ने परिसर में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन कर कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, यहां मैड्रिड की अपनी यात्रा शुरू करते हुए मुझे अपार खुशी का अनुभव हो रहा है। महाधर्माध्यक्ष ने जिस भांति कहा कि जो मैड्रिड में है वह मैड्रिड से है, अतः मैं भी यहाँ मैड्रिड वासी की तरह हूँ। संत पापा लियो ने कहा कि यह विशेषकर इस घर की सच्चाई है, जहाँ कोई भी अकेला नहीं रहता। यहाँ हर व्यक्ति की खुशी और उदासी सबों की खुशी और उदासी बनती है। एक दूसरे को सुनते हुए हम चुनौतियों का सामना एक साथ करते हैं, जटिल परिस्थितियों को नजरअंदाज किए बिना और कभी कभी करुणा और न्याय की मांगों को अनदेखा किए बिना वार्ता के परिवेश में उन लोगों के संग जो मानवता और दुनिया की विशेष चिंता करते हैं हम निवास करते हैं। इस भांति चेदिया सुसमाचार में निहित येसु ख्रीस्त के मार्ग का अनुसरण करता है। संत पापा लियो ने अलीसिया और दूसरे स्वयंसेवियों को आशा की परियोजना हेतु कृतज्ञता के भाव प्रकट किए, जिसके द्वारा बहुत सी नारियों को एक नए जीवन की शुरुआत करने में मदद मिली, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुनः सम्मान, स्वतंत्रता, आशा और मानवीय जीवन के पवित्र मूल्यों को स्थापित करने में मदद मिली। आगे संत पापा ने कहा कि आज ख्रिस्तीय विभिन्न परिस्थितियों में दुनियावी सोच या राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के आदर्शों के शिकार हो गए हैं, जो हमें घटनाओं को सामान्य और गलत नजरिए से देखने को अग्रसर करते हैं। सच्चाई यह है कि कुछ लोग करुणा के कार्यों को अपने से दूर या उनकी अवहेलना करते हैं। यह हमें सुसमाचार को पुनः पढ़ने के लिए विश्वस्त करता है, जिससे हम दुनियावी ज्ञान से स्थानांतरित होने की जोखिम में न पड़ें। यदि हम कलीसियाई जीवन के अंदर रहने की चाह रखते, जिसके फल सुसमाचार से हर समय और हर पल उत्पन्न होते हैं, तो हम गरीबों की अवहेलना नहीं कर सकते। हमें दुख सहने वालों की आंखों में झांक कर देखना और उनकी सहायता करना है। उससे भी बढ़कर हमें भाई बहनों से मिलन, जो पिता के आलिंगन में संयुक्त है। दान देना हितकारी कार्य मात्र नहीं है, व्यक्ति जो दान देता है वह अपने लिए अधिक कृपा को प्राप्त करता है। क्योंकि वह अपने को ईश्वर की निगाहों में दृश्यमान बनाता है। संत पापा लियो ने माता मरियम की ओर निगाहें फेरने का आग्रह किया। संत पापा ने उनके सारे कार्यों को माता मरियम के चरणों में समर्पित किया और अंत में उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
2: संत पापा लियो 14वें ने स्पेन की प्रेरितिक यात्रा के प्रथम पड़ाव के अंतिम चरण में युवाओं के संग जागरण प्रार्थना में भाग लिया और उन्हें अपने संदेश में पृथ्वी का नमक और दुनिया की ज्योति बनने का आह्वान किया। जागरण प्रार्थना के पूर्व संत पापा लियो ने युवाओं के द्वारा पूछे गए 6 सवालों का व्यक्तिगत उत्तर दिया। संत अगुस्टिन और कौन दूसरे संत आपके आदर्श हैं? संत पापा ने अपनी पुरोहिताई प्रशिक्षण और प्रेरिताई के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि मैंने अपनी पवित्रता के लिए बहुत सारे आदर्शों को पाया जो अब तक मेरे संग मेरी यात्रा में चलते हैं। मेरे लिए विशेषकर 3 संत गण हैं जिनकी मैं याद करता हूँ। अपने पहले संत संत जॉन क्रिसोस्टम की याद करते हुए उन्होंने कहा, जिसका अर्थ सुनैला मुख है, मैं विशेषकर उनकी शानदार धर्म शिक्षाओं से अपने को प्रभावित पाता हूँ, जिनमें सत्य के लिए प्रेम और एक निष्ठामय जीवन का सम्मिश्रण है। विलानुवा के संत थॉमस अपने दूसरे संत के बारे में संत पापा ने कहा, वेलेंसिया के धर्माध्यक्ष स्वरूप उन्होंने कलिसा के अंदर एक गहरी नवनीकरण की पहल की, विशेषकर याजकों के मध्य उन्होंने अपने पुरोहित भाइयों को प्रार्थना, शुद्धता और आज्ञाकारिता में सुदृढ़ बने रहने का आह्वान किया। उनकी दयालुता मुश्किल के समय मेरे लिए हिम्मत का स्रोत बनता है। अपने तीसरे संत संत तोर्बियुस दे मोग्रोवेजो के बारे में उन्होंने कहा, वे 16वीं सदी में पेरू में प्रेरित के रूप में कार्य किए, जहां उन्होंने बड़े उत्साह के साथ स्थानीय भाषाओं का अध्ययन करते हुए मूल वासियों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। संत तोर्बियुस ने गहरी प्रार्थना के साथ न्याय के लिए अपने को समर्पित किया, खासकर अपने समय के शोषण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध। इसी कारण वे मेरे लिए एक समर्पित आदर्श के रूप में हैं, विशेषकर गरीबों के लिए। पेरू में अपने प्रेरिताई और एक धर्माध्यक्ष के रूप में अनुभवों को साझा करते हुए संत पापा ने कहा, मैं लोगों के विश्वास के साक्ष्य की याद करता हूँ, एक विश्वास जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं, फिर भी यह आशा से भरी है। बहुत सारी आवाजों के बीच ईश्वर की आवाज को पहचानने पर पूछे गए सवाल के बारे में संत पापा ने कहा,
4: Para reconocer la voz de Dios puede ayudarnos ante todo el silencio.
2: ईश्वर की आवाज को पहचानने में शांति हमें सबसे अधिक मदद करती है। शांति में हम इस बात को समझते हैं कि आदर्शें खत्म हो जाती हैं, सिर्फ सच्चाई सदैव बनी रहती है। हम सभी शांति की खोज करते हैं। संत पापा ने कहा कि आप इस बात से सुनिश्चित हों कि आप ईश्वर की आवाज को पहचानते हों, वे आपको सुनते और आपको जवाब देते हैं। आप अपने हृदय में जो अनुभव करते हैं उसे व्यक्त करें। जब हम स्वयं प्रार्थना बन जाते हैं तो यीशु अपने वचनों से हमें उत्तर देते हैं। संत पापा ने कहा, ईश्वर को पहचानने के लिए हमें उनके जीवित वचनों को सुनने की आवश्यकता है। यीशु ख्रिस्त जिनकी आवाज निरंतर कलीसिया में गूंजती रहती है उनके शरीर के रूप में। यूखरिस्त की आराधना शांति का एक श्रेष्ठ स्थान है, हमारे हृदयों को खोलने का और स्वयं अपने को ईश्वर की उपस्थिति में लाने का, उनसे प्रेम और बातें करने का जो सारी मानवता के लिए पोषण स्वरूप परिवर्तित किए गए हैं। संत पापा ने कहा, आप दूसरों को विश्वास की सुंदरता खोजने में मदद करते हैं। आप याद रखें, हम में से कोई शिक्षक की भांति जन्म नहीं लिया है और ईश्वर के सामने हम सभी उनके शिष्य गण हैं। यदि आप प्रेम से प्रार्थना करते हैं तो युवा जन प्रार्थना की महत्वपूर्णता को पहचानेंगे। यदि आपका विश्वास आपके अंदर प्रज्वलित है तो आप उस जीवित आग को दूसरों के लिए बांटेंगे। यदि आप अपनी बुलाहट के प्रति निष्ठावान बने रहते हैं तो आप कृपा की सुंदरता को प्रतिबिंबित करेंगे। समर्पित ख्रिस्तियों के रूप में जीवन यापन करने के प्रश्न का उत्तर देते हुए संत पापा ने कहा, यीशु के शिष्य सदैव वर्तमान समय के लोग हैं, वे अतीत के गुलाम कभी नहीं हैं। हम यीशु ख्रिस्त में स्वतंत्र हैं, हम प्रेम के प्रति कृतज्ञ हैं, हम जबरदस्ती और धोखा से मुक्त हैं। इस परिदृश्य में आप युवागण समाज को एक नई दिशा में लेने हेतु बुलाए जाते हैं। आप जो जीवन घर, महाविद्यालय और कार्यस्थल में जीते हैं, अपने प्रतिदिन के संबंधों द्वारा आप मुख्य रूप से जीवन में परिवर्तन लाने की मुख्य कड़ी बनते हैं। संत पापा ने कहा, आप पृथ्वी के लिए नमक और दुनिया की ज्योति बने। ऐसा होने के लिए आपको आज की दुनिया को समझने और विवेक में जीने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, यह विशेष प्रेरिताई को मैं आपको सौंपता हूँ, आप मानवीय बने। लोग न्याय की चाह रखते हैं क्योंकि वे इसके भूखे हैं। लोग ईमानदारी और सत्यनिष्ठ जीवन की चाह रखते हैं क्योंकि वे खुशी से दूसरों के लिए वह करते हैं जिसे वे दूसरों के द्वारा अपने लिए किए जाने की चाह रखते हैं। आप यीशु की तरह मानवीय बने, एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो मृतकों में से जी उठकर हमारे संग जीवन साझा करते हैं। उन्होंने कहा,
4: vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con el amor. Muchas gracias.
2: यह वह गुण है जो इतिहास को पूरी तरह परिवर्तित करेगा।
3: अपना संदेश समाप्त करने के बाद संत पापा लियो ने युवाओं के क्रूस के पीछे हस्ताक्षर किया और थोड़ी देर बाद मधुर संगीत के साथ पवित्र संस्कार की आराधना धर्म विधि शुरू हुई। संत पापा ने पवित्र संस्कार की आराधना धर्म विधि का अनुष्ठान किया और रात करीब 11 बजे संत पापा रात्रि विश्राम के लिए प्रेरितिक राजदूतावास लौटे। रविवार 7 जून कैथोलिक कलीसिया कॉर्पस क्रिस्टी यानी यीशु के पवित्र शरीर और रक्त का महोत्सव मनाती है। रविवार सुबह करीब 9:15 बजे प्रेरितिक राजदूतावास से कॉर्पस क्रिस्टी मिसा समारोह का अनुष्ठान करने मशहूर प्लाजा दे सिबेलस के लिए निकले। प्लाजा दे सिबेलस राजधानी की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। संत पापा लियो पापा मोबाइल में मैड्रिड की सड़कों पर विश्वासियों का अभिवादन करते हुए कुछ बच्चों को पुचकारते और आशीर्वाद देते हुए प्लाजा दे सिबेलस के चौक पर बने स्टेज पर पहुंचे और करीब 10:15 बजे संत पापा लियो की अध्यक्षता में पवित्र मिसा समारोह शुरू हुआ।
4: Con el corazón colmado de alegría, al inicio de este viaje a España.
5: जब मैं स्पेन की प्रेरितिक यात्रा शुरू कर रहा हूँ, मैं आनंदित हृदय से ख्रिस्त के पावनतम शरीर के महापर्व पर इस समारोह का अनुष्ठान कर रहा हूँ। हम यूखरिस्त के चारों ओर एकत्रित हैं, जो हमारे बीच ख्रिस्त की जीवित उपस्थिति का उपहार है। उन्होंने हमें अपना जीवन अर्पित करना चाहा ताकि हम पिता से मिल सकें और उनके बच्चे बन सकें। वे जीवित रोटी के रूप में स्वर्ग से उतरे, जिससे कि हमें ईश्वर के जीवन से, मृत्यु से अधिक शक्तिशाली प्रेम से पोषित कर सकें। संत पापा ने कहा कि यूखरिस्त रोटी में प्रभु की उपस्थिति का यह एहसास स्पेन के लोगों के विश्वास एवं इतिहास में गहराई से जुड़ा है। स्पेन के कई दूसरे हिस्सों की तरह मैड्रिड में ख्रिस्त के पावनतम शरीर का महापर्व पूजन पद्धति कैलेंडर के अन्य पर्वों से बढ़कर है। यह विश्वास के केंद्र में लौटने का एक तरीका है ताकि हम ईश्वर के प्रति अपने प्यार एवं निष्ठा को फिर जगा सकें। संत पापा याद करते हैं कि इस दिन होने वाले पौत्र शोभा यात्रा ने सदियों से स्पेन के लोगों की भक्ति कला, संगीत, वास्तुकला एवं जीवन को आकार दिया है। आज भी वे फूलों के कालीन सड़कों पर बनी वेदियों, मॉन्स्ट्रांस और भजनों तथा पौत्र मिसा के परिधानों की सुंदरता के माध्यम से इस देश की आध्यात्मिक भावना को व्यक्त करते हैं। संत पापा ने माना कि यह कोई दिखावा, लोक कथाओं का बचा हुआ हिस्सा या सुंदरता का प्रदर्शन मात्र नहीं है, यह पुनर्जीवित प्रभु की उपस्थिति में विश्वास की अभिव्यक्ति है, जो जीवित हैं और हमारे बीच चलते हैं, जो जीवन की हमारी भूख मिटाने के लिए रोटी बन जाते हैं और हमारे दिलों एवं इतिहास के उन जगहों पर भी आते हैं जो अंधकार से घिरे हैं। जिस प्रकार पौत्र यूखरिस्त में ख्रिस्त स्वयं हमारे लिए अपने आप को भोजन के रूप में देते हैं, पौत्र संस्कार की शोभा यात्रा दिखाती है कि वे सिर्फ गिरजाघर में बंद नहीं हैं, बल्कि हमसे मिलने बाहर आते हैं। यीशु सड़कों पर घूमते हैं, चौक पार करते हैं, हमारे पड़ोस में, हमारे दैनिक जीवन में आते हैं। वे एक ऐसे ईश्वर हैं जो हमारे करीब हैं, जो अपने लोगों के साथ चलते हैं। वे इतिहास के प्रभु हैं। वे दुर्बलों के लिए आराम हैं, परिवारों के लिए रोशनी, बीमारों के लिए उम्मीद, और जो लोग दुख झेल रहे हैं उनके लिए शांति हैं। मसीह जो पौत्र संस्कार में सड़कों से गुजरते हैं, गरीबों, दबे कुचले लोगों, अकेले और परित्यक्त लोगों के साथ अपनी पहचान बनाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शोभा यात्रा पौत्र संस्कार को सिर्फ बाहर निकालना नहीं, बल्कि अपने आप को अपने स्वार्थ और उदासीनता से, एक आरामदायक स्थिति से, आत्मविश्वास से ऊपर उठाना है, ताकि हम मन परिवर्तन के उनके निमंत्रण का प्रत्युत्तर दे सकें, अपना दृष्टिकोण बदल सकें और उनकी उपस्थिति का स्वागत कर सकें, जो हमें बदल देते और हमें एक नई दुनिया के निर्माता बनाते हैं। यही कारण है कि ख्रिस्त के पावन शरीर की शोभा यात्रा की ऐतिहासिक याद सिर्फ पुरानी याद नहीं, बल्कि आज के समय में हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रिश्तों में, समाज में और भविष्य के निर्माण में एक बुलावा है। इसी संदर्भ में हम पहले पाठ में याद रखने के निमंत्रण को समझते हैं। याद रखो कि जब तुम भूखे थे तो उन्होंने तुम्हें मन्ना खिलाया। हमें इसे याद रखना चाहिए, ताकि हम यह ना भूलें कि प्रभु कौन है, ताकि हम दूसरी देव मूर्तियों पर भरोसा करने और ऐसी रोटी खाने के लालच में ना पड़ें जो संतुष्ट नहीं कर सकती। संत पापा ने स्पेन के विश्वासों से कहा
6: कि la religiosidad que desde hace siglos anima este país sea del pasado que visitar.
5: आज और भविष्य में स्पेन का काम यही है, यह सुदृढ़ करना कि जिस धार्मिकता ने सदियों से इस देश को बनाया और बताया है, वह अतीत का संग्रहालय ना रहे जिसका दर्शन किया जाता, बल्कि विश्वास का स्कूल हो जहां से आज भी कुछ सीखा जा सके। एक ऐसा स्कूल जो हमें ईश्वर और अपने पड़ोसी के सामने झुकना सिखाए, क्योंकि कोई भी ईश्वर के सामने झुककर अपने भाई को नीचा नहीं समझ सकता। एक ऐसा स्कूल जो हमें मुफ्त प्रेम की कीमत सिखाए, जो एक उपहार बन जाता है, जिससे कि यह हमारे बीच बहे और सभी स्वार्थ के जंजीरों को तोड़ दे। एक ऐसा स्कूल जहां से हम सीख सकें कि ईश्वर एक सच्ची उपस्थिति है और हमें भी समाज की सच्चाइयों और चुनौतियों में उपस्थित रहने के लिए बुलाया गया है। संत पापा ने कहा कि यूखरिस्त यीशु वह शाश्वत झरना है जो छिपा हुआ है, एक ऐसा झरना जो बहता है और प्यास बुझाता है, लेकिन किसी को अंधा नहीं बनाता, बाहरी शक्ति के द्वारा खुद को नहीं थोपता, ना ही खुद को शानदार तरीके से प्रस्तुत करता है। उन्होंने स्पेन के सभी विश्वासियों का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम सच्चे प्यार के साथ उनके पास लौटें, हम उनसे मिलने के लिए खुद को खोलें, उन्हें अपने दिल की प्यास बुझाने दें। यूखरिस्त कृपा हमें बदल देती है, हमें इतिहास के बदलाव का हीरो बनाती है, हमें उन लोगों के लिए आशा की निशानी बनाती है जिनसे हम मिलते हैं। और अंत में संत पापा ने कहा, यूखरिस्त में उपस्थित प्रभु येसु आपको तोड़ी प्रदान की गई और अर्पित रोटी में बदल दें, ताकि आपके लिए, आपके परिवारों के लिए और आपके देश के लिए परिपूर्ण जीवन फले फूले।
3: संत पापा ने पौत्र मिसा समारोह के अंत में प्रांगण में कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस की अगुवाई की। कॉर्पस क्रिस्टी समारोह के बाद संत पापा प्रेरितिक राजदूतावास लौटे और शाम 4:30 बजे संत अगुस्टीन धर्म समाज के अपने भाइयों से अकेले में मुलाकात की। बाद में शाम को 6 बजे मैड्रिड के मोविस्टार एरिना में संस्कृति, कला, व्यापार और खेल के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग में भाग लेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें का स्पेन की प्रेरितिक यात्रा का संक्षिप्त विवरण। प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज, फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, संत पापा लियो 14वें अपनी चौथी अंतर्राष्ट्रीय प्रेरितिक यात्रा स्पेन में कर रहे हैं। स्पेन की 7 दिनों की प्रेरितिक यात्रा का पहला दिन मैड्रिड के राजभवन के दौरे से शुरू हुआ, जहां संत पापा का स्वागत राजा फिलिप षष्ठम, रानी लेतीसिया और उनकी 2 बेटियों ने किया। राजभवन में मैड्रिड के अधिकारियों और राजनयिकों को संबोधित करते हुए संत पापा लियो 14वें ने कहा कि वे विश्वासियों के बीच सुसमाचार में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए स्पेन आए हैं, कि धार्मिक स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। संत पापा लियो 14वें ने शाम को मैड्रिड धर्म प्रांत की सूचना और स्वागत सामाजिक परियोजना

0: संत पापा लियो ने कहा कि यह विशेषकर इस घर की सच्चाई है जहाँ कोई भी अकेला नहीं रहता। यहाँ हर व्यक्ति की खुशी और उदासी सबों की खुशी और उदासी बनती है। एक दूसरे को सुनते हुए हम चुनौतियों का सामना एक साथ करते हैं, जटिल परिस्थितियों को नजरअंदाज किए बिना और कभी कभी करुणा और न्याय की मांगों को अनदेखा किए बिना वार्ता के परिवेश में उन लोगों के संग जो मानवता और दुनिया की विशेष चिंता करते हैं हम निवास करते हैं। इस भांति चेदिया सुसमाचार में निहित येसु ख्रीस्त के मार्ग का अनुसरण करता है। संत पापा लियो ने अलीसिया और दूसरे स्वयं सेवियों को आशा की परियोजना हेतु कृतज्ञता के भाव प्रकट किए, जिसके द्वारा बहुत सी नारियों को एक नए जीवन की शुरुआत करने में मदद मिली, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुनः सम्मान, स्वतंत्रता, आशा और मानवीय जीवन के पवित्र मूल्यों को स्थापित करने में मदद मिली। आगे संत पापा ने कहा कि आज ख्रिस्तीय विभिन्न परिस्थितियों में दुनियावी सोच या राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के आदर्शों के शिकार हो गए हैं, जो हमें घटनाओं को सामान्य और गलत नजरिए से देखने को अग्रसर करते हैं। सच्चाई यह है कि कुछ लोग करुणा के कार्यों को अपने से दूर या उनकी अवहेलना करते हैं। यह हमें सुसमाचार को पुनः पढ़ने के लिए विश्वस्त करता है, जिससे हम दुनियावी ज्ञान से स्थानांतरित होने की जोखिम में न पड़ें। यदि हम कलीसियाई जीवन के अंदर रहने की चाह रखते, जिसके फल सुसमाचार से हर समय और हर पल उत्पन्न होते हैं, तो हम गरीबों की अवहेलना नहीं कर सकते। हमें दुख सहने वालों की आंखों में झांक कर देखना और उनकी सहायता करना है। उससे भी बढ़कर हमें भाई बहनों से मिलन, जो पिता के आलिंगन में संयुक्त है। दान देना हितकारी कार्य मात्र नहीं है, व्यक्ति जो दान देता है वह अपने लिए अधिक कृपा को प्राप्त करता है, क्योंकि वह अपने को ईश्वर की निगाहों में दृश्यमान बनाता है। संत पापा लियो ने माता मरियम की ओर निगाहें फेरने का आग्रह किया। संत पापा ने उनके सारे कार्यों को माता मरियम के चरणों में समर्पित किया और अंत में उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: संत पापा लियो चौदहवें ने स्पेन की प्रेरितिक यात्रा के प्रथम पड़ाव के अंतिम चरण में युवाओं के संग जागरण प्रार्थना में भाग लिया और उन्हें अपने संदेश में पृथ्वी का नमक और दुनिया की ज्योति बनने का आह्वान किया। जागरण प्रार्थना के पूर्व संत पापा लियो ने युवाओं के द्वारा पूछे गए 6 सवालों का व्यक्तिगत उत्तर दिया। संत अगुस्टिन और कौन दूसरे संत आपके आदर्श हैं? संत पापा ने अपनी पुरोहिताई प्रशिक्षण और प्रेरिताई के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि मैंने अपनी पवित्रता के लिए बहुत सारे आदर्शों को पाया जो अब तक मेरे संग मेरी यात्रा में चलते हैं। मेरे लिए विशेषकर 3 संत गण हैं जिनकी मैं याद करता हूँ। अपने पहले संत संत जॉन क्रिसोस्टम की याद करते हुए उन्होंने कहा, जिसका अर्थ सुनैला मुख है, मैं विशेषकर उनकी शानदार धर्म शिक्षाओं से अपने को प्रभावित पाता हूँ, जिनमें सत्य के लिए प्रेम और एक निष्ठामय जीवन का सम्मिश्रण है। विलानुवा के संत थॉमस अपने दूसरे संत के बारे में संत पापा ने कहा, वेलेंसिया के धर्माध्यक्ष स्वरूप उन्होंने कलिसा के अंदर एक गहरी नवनिकरण की पहल की, विशेषकर याजकों के मध्य उन्होंने अपने पुरोहित भाइयों को प्रार्थना, शुद्धता और आज्ञाकारिता में सुदृढ़ बने रहने का आह्वान किया। उनकी दयालुता मुश्किल के समय मेरे लिए हिम्मत का स्रोत बनता है। अपने तीसरे संत संत तोरबियुस दे मोग्रोवेजो के बारे में उन्होंने कहा, वे 16वीं सदी में पेरू में प्रेरित के रूप में कार्य किए, जहां उन्होंने बड़े उत्साह के साथ स्थानीय भाषाओं का अध्ययन करते हुए मूल वासियों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। संत तोरबियुस ने गहरी प्रार्थना के साथ न्याय के लिए अपने को समर्पित किया, खासकर अपने समय के शोषण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध। इसी कारण वे मेरे लिए एक समर्पित आदर्श के रूप में हैं, विशेषकर गरीबों के लिए। पेरू में अपने प्रेरिताई और एक धर्माध्यक्ष के रूप में अनुभवों को साझा करते हुए संत पापा ने कहा, मैं लोगों के विश्वास के साक्ष्य की याद करता हूँ, एक विश्वास जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं, फिर भी यह आशा से भरी है।

0: बहुत सारी आवाजों के बीच ईश्वर की आवाज को पहचानने पर पूछे गए सवाल के बारे में संत पापा ने कहा,
1: Para reconocer la voz de Dios puede ayudarnos ante todo el silencio.
0: ईश्वर की आवाज को पहचानने में शांति हमें सबसे अधिक मदद करती है। शांति में हम इस बात को समझते हैं कि आदर्शें खत्म हो जाती हैं, सिर्फ सच्चाई सदैव बनी रहती है। हम सभी शांति की खोज करते हैं। संत पापा ने कहा कि आप इस बात से सुनिश्चित हों कि आप ईश्वर की आवाज को पहचानते हों। वे आपको सुनते और आपको जवाब देते हैं। आप अपने हृदय में जो अनुभव करते हैं उसे व्यक्त करें। जब हम स्वयं प्रार्थना बन जाते हैं तो यीशु अपने वचनों से हमें उत्तर देते हैं। संत पापा ने कहा, ईश्वर को पहचानने के लिए हमें उनके जीवित वचनों को सुनने की आवश्यकता है। यीशु ख्रिस्त जिनकी आवाज निरंतर कलीसिया में गूंजती रहती है उनके शरीर के रूप में। यूखरिस्त की आराधना शांति का एक श्रेष्ठ स्थान है, हमारे हृदयों को खोलने का और स्वयं अपने को ईश्वर की उपस्थिति में लाने का, उनसे प्रेम और बातें करने का जो सारी मानवता के लिए पोषण स्वरूप परिवर्तित किए गए हैं। संत पापा ने कहा, आप दूसरों को विश्वास की सुंदरता खोजने में मदद करते हैं। आप याद रखें, हम में से कोई शिक्षक की भांति जन्म नहीं लिया है और ईश्वर के सामने हम सभी उनके शिष्य गण हैं। यदि आप प्रेम से प्रार्थना करते हैं तो युवा जन प्रार्थना की महत्वपूर्णता को पहचानेंगे। यदि आपका विश्वास आपके अंदर प्रज्वलित है तो आप उस जीवित आग को दूसरों के लिए बांटेंगे। यदि आप अपनी बुलाहट के प्रति निष्ठावान बने रहते हैं तो आप कृपा की सुंदरता को प्रतिबिंबित करेंगे। समर्पित ख्रिस्तियों के रूप में जीवन यापन करने के प्रश्न का उत्तर देते हुए संत पापा ने कहा, यीशु के शिष्य सदैव वर्तमान समय के लोग हैं, वे अतीत के गुलाम कभी नहीं हैं। हम यीशु ख्रिस्त में स्वतंत्र हैं, हम प्रेम के प्रति कृतज्ञ हैं, हम जबरदस्ती और धोखा से मुक्त हैं। इस परिदृश्य में आप युवागण समाज को एक नई दिशा में लेने हेतु बुलाए जाते हैं। आप जो जीवन घर महाविद्यालय और कार्यस्थल में जीते हैं, अपने प्रतिदिन के संबंधों द्वारा आप मुख्य रूप से जीवन में परिवर्तन लाने की मुख्य कड़ी बनते हैं। संत पापा ने कहा, आप पृथ्वी के लिए नमक और दुनिया की ज्योति बने। ऐसा होने के लिए आपको आज की दुनिया को समझने और विवेक में जीने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, यह विशेष प्रेरिताई को मैं आपको सौंपता हूँ, आप मानवीय बने। लोग न्याय की चाह रखते हैं क्योंकि वे इसके भूखे हैं। लोग ईमानदारी और सत्यनिष्ठ जीवन की चाह रखते हैं क्योंकि वे खुशी से दूसरों के लिए वह करते हैं जिसे वे दूसरों के द्वारा अपने लिए किए जाने की चाह रखते हैं। आप यीशु की तरह मानवीय बने, एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो मृतकों में से जी उठकर हमारे संग जीवन साझा करते हैं। उन्होंने कहा,
1: Vosotros podéis cambiar la historia. Hacedlo con el amor. Muchas gracias.
0: यह वह गुण है जो इतिहास को पूरी तरह परिवर्तित करेगा।
2: अपना संदेश समाप्त करने के बाद संत पापा लियो ने युवाओं के क्रूस के पीछे हस्ताक्षर किया और थोड़ी देर बाद मधुर संगीत के साथ पवित्र संस्कार की आराधना धर्म विधि शुरू हुई। संत पापा ने पवित्र संस्कार की आराधना धर्म विधि का अनुष्ठान किया और रात करीब 11 बजे संत पापा रात्रि विश्राम के लिए प्रेरितिक राजदूतावास लौटे। रविवार 7 जून कैथोलिक कलीसिया कॉर्पस क्रिस्टी यानी यीशु के पवित्र शरीर और रक्त का महोत्सव मनाती है। रविवार सुबह करीब 9:15 बजे प्रेरितिक राजदूतावास से कॉर्पस क्रिस्टी मिसा समारोह का अनुष्ठान करने मशहूर प्लाजा दे सिबेलस के लिए निकले। प्लाजा दे सिबेलस राजधानी की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। संत पापा लियो पापा मोबाइल में मैड्रिड की सड़कों पर विश्वासियों का अभिवादन करते हुए कुछ बच्चों को पुचकारते और आशीर्वाद देते हुए प्लाजा दे सिबेलस के चौक पर बने स्टेज पर पहुंचे। और करीब 10:15 बजे संत पापा लियो की अध्यक्षता में पवित्र मिसा समारोह शुरू हुआ।
3: Con el corazón colmado de alegría al inicio de este viaje a España।
4: जब मैं स्पेन की प्रेरितिक यात्रा शुरू कर रहा हूँ, मैं आनंदित हृदय से ख्रिस्त के पावनतम शरीर के महापर्व पर इस समारोह का अनुष्ठान कर रहा हूँ। हम यूखरिस्ट के चारों ओर एकत्रित हैं, जो हमारे बीच ख्रिस्त की जीवित उपस्थिति का उपहार है। उन्होंने हमें अपना जीवन अर्पित करना चाहा, ताकि हम पिता से मिल सकें और उनके बच्चे बन सकें। वे जीवित रोटी के रूप में स्वर्ग से उतरे, जिससे कि हमें ईश्वर के जीवन से मृत्यु से अधिक शक्तिशाली प्रेम से पोषित कर सकें। संत पापा ने कहा कि यूखरिस्त रोटी में प्रभु की उपस्थिति का यह एहसास स्पेन के लोगों के विश्वास एवं इतिहास में गहराई से जुड़ा है। स्पेन के कई दूसरे हिस्सों की तरह मैड्रिड में ख्रिस्त के पावनतम शरीर का महापर्व पूजन पद्धति कैलेंडर के अन्य पर्वों से बढ़कर है। यह विश्वास के केंद्र में लौटने का एक तरीका है, ताकि हम ईश्वर के प्रति अपने प्यार एवं निष्ठा को फिर जगा सकें। संत पापा याद करते हैं कि इस दिन होने वाले पौत्र शोभा यात्रा ने सदियों से स्पेन के लोगों की भक्ति कला, संगीत, वास्तुकला एवं जीवन को आकार दिया है। आज भी वे फूलों के कालीन सड़कों पर बनी वेदियों, मॉन्स्ट्रांस और भजनों तथा पौत्र मिसा के परिधानों की सुंदरता के माध्यम से इस देश की आध्यात्मिक भावना को व्यक्त करते हैं। संत पापा ने माना कि यह कोई दिखावा, लोक कथाओं का बचा हुआ हिस्सा या सुंदरता का प्रदर्शन मात्र नहीं है, यह पुनर्जीवित प्रभु की उपस्थिति में विश्वास की अभिव्यक्ति है, जो जीवित हैं और हमारे बीच चलते हैं, जो जीवन की हमारी भूख मिटाने के लिए रोटी बन जाते हैं और हमारे दिलों एवं इतिहास के उन जगहों पर भी आते हैं जो अंधकार से घिरे हैं। जिस प्रकार पौत्र यूखरिस्त में ख्रिस्त स्वयं हमारे लिए अपने आप को भोजन के रूप में देते हैं, पौत्र संस्कार की शोभा यात्रा दिखाती है कि वे सिर्फ गिरजाघर में बंद नहीं हैं, बल्कि हमसे मिलने बाहर आते हैं। यीशु सड़कों पर घूमते हैं, चौक पार करते हैं, हमारे पड़ोस में, हमारे दैनिक जीवन में आते हैं। वे एक ऐसे ईश्वर हैं जो हमारे करीब हैं, जो अपने लोगों के साथ चलते हैं। वे इतिहास के प्रभु हैं, वे दुर्बलों के लिए आराम हैं, परिवारों के लिए रोशनी, बीमारों के लिए उम्मीद और जो लोग दुख झेल रहे हैं उनके लिए शांति हैं। मसीह जो पौत्र संस्कार में सड़कों से गुजरते हैं, गरीबों, दबे कुचले लोगों, अकेले और परित्यक्त लोगों के साथ अपनी पहचान बनाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि शोभा यात्रा पौत्र संस्कार को सिर्फ बाहर निकालना नहीं, बल्कि अपने आप को अपने स्वार्थ और उदासीनता से एक आरामदायक स्थिति से आत्मविश्वास से ऊपर उठाना है, ताकि हम मन परिवर्तन के उनके निमंत्रण का प्रत्युत्तर दे सकें, अपना दृष्टिकोण बदल सकें और उनकी उपस्थिति का स्वागत कर सकें, जो हमें बदल देते और हमें एक नई दुनिया के निर्माता बनाते हैं। यही कारण है कि ख्रिस्त के पावन शरीर की शोभा यात्रा की ऐतिहासिक याद सिर्फ पुरानी याद नहीं, बल्कि आज के समय में हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रिश्तों में, समाज में और भविष्य के निर्माण में एक बुलावा है। इसी संदर्भ में हम पहले पाठ में याद रखने के निमंत्रण को समझते हैं। याद रखो कि जब तुम भूखे थे तो उन्होंने तुम्हें मन्ना खिलाया। हमें इसे याद रखना चाहिए, ताकि हम यह ना बोलें कि प्रभु कौन है, ताकि हम दूसरी देव मूर्तियों पर भरोसा करने और ऐसी रोटी खाने के लालच में ना पड़ें जो संतुष्ट नहीं कर सकती। संत पापा ने स्पेन के विश्वासियों से कहा
3: कि la religiosidad que desde hace siglos anima este país sea del pasado que visitar।
4: आज और भविष्य में स्पेन का काम यही है, यह सुदृढ़ करना कि जिस धार्मिकता ने सदियों से इस देश को बनाया और बताया है, वह अतीत का संग्रहालय ना रहे जिसका दर्शन किया जाता, बल्कि विश्वास का स्कूल हो, जहां से आज भी कुछ सीखा जा सके। एक ऐसा स्कूल जो हमें ईश्वर और अपने पड़ोसी के सामने झुकना सिखाए, क्योंकि कोई भी ईश्वर के सामने झुककर अपने भाई को नीचा नहीं समझ सकता। एक ऐसा स्कूल जो हमें मुफ्त प्रेम की कीमत सिखाए, जो एक उपहार बन जाता है, जिससे कि यह हमारे बीच बहे और सभी स्वार्थ के जंजीरों को तोड़ दे। एक ऐसा स्कूल जहाँ से हम सीख सकें कि ईश्वर एक सच्ची उपस्थिति है और हमें भी समाज की सच्चाइयों और चुनौतियों में उपस्थित रहने के लिए बुलाया गया है। संत पापा ने कहा कि यूखरिस्त यीशु वह शाश्वत झरना है जो छिपा हुआ है, एक ऐसा झरना जो बहता है और प्यास बुझाता है, लेकिन किसी को अंधा नहीं बनाता, बाहरी शक्ति के द्वारा खुद को नहीं थोपता, ना ही खुद को शानदार तरीके से प्रस्तुत करता है। उन्होंने स्पेन के सभी विश्वासियों का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम सच्चे प्यार के साथ उनके पास लौटें, हम उनसे मिलने के लिए खुद को खोलें, उन्हें अपने दिल की प्यास बुझाने दें। यूखरिस्त कृपा हमें बदल देती है, हमें इतिहास के बदलाव का हीरो बनाती है, हमें उन लोगों के लिए आशा की निशानी बनाती है जिनसे हम मिलते हैं। और अंत में संत पापा ने कहा, यूखरिस्त में उपस्थित प्रभु येसु आपको तोड़ी प्रदान की गई और अर्पित रोटी में बदल दें, ताकि आपके लिए, आपके परिवारों के लिए और आपके देश के लिए परिपूर्ण जीवन फले फूले।
2: संत पापा ने पौत्र मिसा समारोह के अंत में प्रांगण में कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस की अगुवाई की। कॉर्पस क्रिस्टी समारोह के बाद संत पापा प्रेरितिक राजदूतावास लौटे और शाम 4:30 बजे संत अगुस्टीन धर्म समाज के अपने भाइयों से अकेले में मुलाकात की। बाद में शाम को 6 बजे मैड्रिड के मोविस्टार एरिना में संस्कृति, कला, व्यापार और खेल के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग में भाग लेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।